ए रशुगे एम्मे दुरुफरातु मीहकु दुवमुं आइस बुन्ये ए अहुरेंगे कौमुगे मीहुन्नेव त्येबै मीहुं ए रसूलुन्न तबाअवाशे